करे अंग अंग तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़, I am the baddest motherfucker।

0: आवाज अच्छी है, बस थोड़ा नमक कम है। और राग में नमक आने के लिए नमकीन जिंदगी जीनी पड़ती है।
1: और नमक ज्यादा हो जाए तो कड़वी हो जाती है जिंदगी। मैं आपसे संगीत सीखने आई हूं।
0: हमारे यहां संगीत को गाना कहते हैं।
1: गाना सिखाने की जो कीमत हो मंजूर है।
0: हमारी कला इतनी अजीम है कि उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। आप शादीशुदा हैं। हमारा तजुर्बा है कि एक बार जो उस आग के चक्कर काट लेता है, उसके अंदर की आग हमेशा के लिए बुझ जाती है।
1: उसी बुझी हुई आग को फिर से जगाने आई हूं। मुझे यहां से ना उम्मीद ना लौटाइए।
2: रूप, शाम हो रही है, हमें चलना चाहिए।
0: आप चौधरी के यहां काम करती हैं?
2: जी।
0: आपके घर पे पता है कि आप हमसे मिलने आई हैं?
1: जी पता है।
0: कल आइएगा, आपकी आवाज फिर से सुनूंगी। और अगर दोबारा पसंद आए तो आपको जरूर सिखाएंगे।
3: फिलहाल इस गुफ्तगू से थक गए हैं हम। खुदा हाफिज़।

जितना दूर जाएंगे आप उतना करीब आएंगे मुझे। अपनी आंखों की कशिश को अपने पलकों के एतराज से छुपाने की कोशिश ना करें।